0: क्या हुआ बेटी, क्या बात है?
1: अंकल, अब विशाल, विशाल ऑटो में तेरा ही फंस गया है।
0: क्या हुआ विशाल को?
1: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
0: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
2: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
0: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
2: क्या कहा, प्लॉट नंबर 13?
0: जी हाँ।
3: प्लीज जरा जल्दी आइए।
2: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
4: रेडिएशन, द नंबर 1 स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन।
5: Let me come. I'm gonna do Desi. Indie Girl, the video to it, check it out. Check out the video to it. So I downloaded it in like high quality yesterday, like early hours of the morning. I was checking it out, I thought, yo. My tiredness went away, I thought, no. Why did I watch it at 2:50 something in the morning? I thought, no. No, just avoid watching videos that time in the morning when I got a radio show in the morning to do as well. So like, no. I'll watch it again later on today. I'm honored. And I love the production. It's a good video. I like the video as well. Dab on Radiation, the number 1 station for the Asian invasion. Amadeep, A-M-M, space D-E-E-P. Brother sent over the track called Lowrider, yeah. Check it out. Brother Mehi's from Garden Music sending over one as well. He says the mix is not 100%, I think. But to have that exclusive for my show, it's an honor. So hopefully not over in the next, I don't know, like 36 minutes or something, then I can play it out. Yeah, but this is Lowrider on Radiation, the number 1 station for the Asian invasion. Let's go.

0: जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ।
1: क्या बात है।